तुझे खुला संगा थोड़ा पूर्ण जा गाँव न पाऊँगा मैं सपना तेरंगा था तुझे खुला संगा थोड़ा

मन भी चबाया फिर इत्र भी लगाया। थोड़ा संभल संभल के आया मैं सीधा चल के।

ढोलक की थाप दूर दराज के महलों तक सुनाई दी। जब उसे खबर मिली तो वो भी पहुंचा। खिड़कियों दरवाजों से झांक झांक कर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा। मेहंदी सजी दुल्हन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। एक सहेली दुल्हन के लिए चाय की प्याली लेकर आई। उसने तो मांगी नहीं थी। सहेली की आंख ने झपक कर कहा, पी लो, कप में पैगाम भी है। कप की तह में उसने अंगूठी रखकर भेजी थी। अंगूठी होंठों से पी ली और उंगली में पहन ली। सहेली की मेहंदी लगी हथेली पर उसने लिख कर भेज दिया, उसी सनसेट पर मिलना जो पुल पर मिला था। लेकिन संदेशा पहुंचा नहीं, वो जा चुका था। पल भर में सब बदल गया और कुछ भी नहीं बदला। जो बदला था वो तो गुजर गया।

0: हेलो।
1: हेलो हेलो मैडम।
0: हाँ सर बोला।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: हाँ नमस्कार सर बोला।
1: हाँ मैं बोलते है।
0: हाँ
1: हमारे गाने डिजिटल दुकान है, जो लास्ट डिजिटल दुकान है ये सिम विद्युत थी होती आपकी।
0: नक्की नक्की सर नक्की सर।
1: मैंने कहा एक मोहम्मद लफी है, गाने ऐकल तो वे खत पर सोतनी पहले वाले दोनों पहले वाले गाने ऐकले।
0: नक्की सर।
1: आणि पंकज जोशाने आमचे मित्र आहे काही, पंकज जोशाने उदयस कोथळे आणि दिनेश पाटील यांचं गाणं ऐकायचं
0: इथे। थँक्यू सर।

0: हेलो
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी सर, नमस्ते, बोलिए।
1: बढ़िया है, गाना सुनना है, फिल्म है दिल तो पागल है, और गीत के बोल हैं कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोल।
0: जी सर, जी, थैंक यू सो मच सर,
1: धन्यवाद।

0: हेलो रेडियो विश्वास।
1: दर्शन नगर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी जी सर, नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छे हूँ। आपके कल से फोन किया हूँ। हमारे यहाँ कल पानी गिरा मैडम, आप लोग तरफ पानी गिरने के लिए गिरा है पानी?
0: नहीं सर, अभी यहाँ पे नासिक में नहीं हुआ है बारिश,
1: अब वो चालू हो जाएगा मैडम, क्योंकि अब हर जगह मानसून आ गया है, मानसून गिर गया है और ये समाचार में सुनते रहेगा, पानी गिरेगा जरूर। मतलब पूरा आता है तो आज मैं दीक्षा भर के मनोविशा है और गीत की बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन गायक कुमार स्वामी, तीन का नाम सर। गीत की बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन गायक कुमार स्वामी गीत आपको श्रोता को रेडियो विश्वास में देश से मिले में से आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपके सहयोगियों को, पूरे भारत का श्रोता को, और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं विश्वास रेडियो जुड़े सभी दूसरे भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, सभी लोगों को डिटेल काउंसल आपकी तरफ जरूर पानी गिरेगा मेरा दुआ है।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: जी मैडम।

ठाकरे डाई प्लॉट एक्सपो 2026 इन्हें रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इन्हें कमर्शियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, फार्म हाउस प्लॉट्स एंड विलास एग्रीकल्चरल लैंड से भरपूर पर्याय नक्की भेट द्या। 13 व 14 जून सकाळी 10:30 ते 8:30 पर्यंत मनोहर गार्डन ट्रीट हॉटेल गोविंद नगर नाशिक 788-799-1000।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: तुम्हा बायकांच्या सोने खरेदीच्या हौशीचं आता काय?
2: देशाचा सन्मान आणि आम्हाला खरं समाधान मिळणारच।
1: ते कसं?
2: आम्हाला गवसलाय अडावतकरांचा कल्पतरू प्लॅन, म्हणजे कमी दरात बुकिंग।
1: बर,
2: आज खरेदीचं समाधान आणि वर्षभरानं बिना मजुरीचा दागिनाही, GST भरणा एकदाच।
1: स्मार्ट प्लॅन।

0: हेलो
1: हेलो मैडम।
0: हाँ सर बोला।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: हाँ नमस्कार सर बोला।
1: मैं बोलते है।
0: हाँ
1: हमारे गान डिजिटल दुकान है, जो राष्ट्रीय दुकान है, ये सिम विद्युत थी आपकी।
0: नक्की नक्की सर।
1: मैंने कहा एक मोहम्मद रफी है, गाना ऐक तो वे पहले परिवार दोनों परिवार गाना ऐक
0: नक्की सर।
1: पंकज जोशी अंतिम मित्र का ही पंकज जोशी उदयस कोथळेनी दिनेश पाटील गाना ऐक।
0: यस सर। थैंक यू सर।

0: हेलो
1: हाँ जी, योगेश जांगरे पे मैं करा छत्तीसगढ़ से। बढ़िया
0: जी जी सर नमस्ते बोलिए।
1: है, गाना सुनना है, फिल्म है दिल तो पागल है और गीत के बोल हैं कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोल।
0: जी सर जी थैंक यू सो मच सर।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हो बोला सर।
1: फरमाइश देखी थी।
0: हो सांगा ना।
1: जना रोटी कपड़ा मकान।
0: बर बर त्यातलं कुठलं?
1: महिना बोलून जा।
0: अच्छा चालेल सर, चालेल, ठीक आहे,
1: थँक्यू मॅडम।
0: हो हो।

0: हेलो रेडियो विश्वास।
1: नमस्कार, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी जी सर, नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छे हूँ। आपके कल से फोन किया हूँ। हमारे यहाँ कल पानी गिरा मैडम, आप लोग तो पानी गिरने के लिए गिरा है पानी?
0: नहीं सर, अभी यहाँ पे नासिक में नहीं हुआ है बारिश,
1: अब वो चालू हो जाएगा मैडम, क्योंकि अब हर जगह मानसून आ गया है, मानसून गिर गया है और ये समाचार में सुनते रहेगा, पानी गिरेगा जरूर। मतलब पूरा आता है तो आज मैं दीक्षा भर के मनोविशा है और गीत की बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन गायक कुमार स्वामी, तीन का नाम सर। गीत की बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन गायक कुमार स्वामी गीत आपको श्रोता को रेडियो आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपके सहयोगियों को, पूरे भारत का श्रोता को, और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं विश्वास रेडियो जुड़े सभी दूसरे भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, सभी लोगों को डिटेल काउंसल आपकी तरफ जरूर पानी गिरेगा मेरा दुआ है।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: जी मैडम।

0: तेरी एक बात मानूंगी, मानूंगी ना। तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: जस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझे।

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ।